0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: 0208574 8410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Mom, I'm outside. Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
0: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: Like a Gold. 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
1: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर

गावे को गुण वडियाइया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर।

ओ मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना।

मन कोय मन्ने सुध होवे मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की सुध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड़ हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए अखरी ना।

कौन पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे 68 तीर्थ नाले।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साहब नानक रहन जाई।

राहत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

आद अनाहत जुग जुग एको वेश, आसन लोय लोय भंडार, जो कुछ पाया सो एका वार, कर कर वेखे सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, एक दूजी बो लख होवें, लख होवें लखवीस, लख

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

0: Breaker Radio Network, broadcasting across Greater London.
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा,

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: भाई डॉन फिल्म से लिया था ये गाना किशोर कुमार की आवाज में, और ये एक अवार्ड विनिंग गाना था, क्योंकि इस गाने को गाने के लिए किशोर कुमार को फिल्म फेयर का बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। और क्या म्यूजिक बनाया था कल्याण जी आनंद जी ने, उन्हें भी म्यूजिक के लिए नॉमिनेशन मिला था, लेकिन इस फिल्म में इस गीत के लिए किशोर दा ने। और वो गाना सुना है ना आपने, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना।

0: होगा और आज ये 3 घंटे मेरा साथ देने के लिए आप बिल्कुल तैयार है ना। चलिए फिर हो जाए, बढ़ जाए आगे। सभी को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ जाते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर भारत पैसा भिजवाना चाहते हैं तो आज 1 pound आपको देगा 127.5 भारतीय रुपए, लेकिन ये ट्रांसफर आपको SBI ब्रांच ऑनलाइन और उनके योनो ऐप के थ्रू करवाना होगा। और इसके अलावा अगर आप SBI या योनो ऐप के थ्रू 1000 pound से ज़्यादा सेंड करते हैं तो आपको 75 pound का वाउचर मिल सकता है जब भी आप कराएं, और अगर आप 2000 pound से ज़्यादा का ट्रांसफ़र कराते हैं तो आपको मिल सकता है 1 gram गोल्ड कॉइन, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है Leica Gold.
3: Psst. You. Yeah, you. Listening to the radio. Up to whatever. We just wanted to let you know there's a lotto draw coming up and
4: it could be you.
3: Yeah, what he said. Lotto, from the National Lottery. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.

0: राकेश रोशन की म्यूजिक पर देश परदेश फिल्म का ये गाना नजराना भेजा किसी ने प्यार का, चलिए मेरी ओर से आप सबके नाम पर करती हूँ। आप सभी ने हमें बहुत प्यार दिया है और इतने सालों से देते आ रहे हैं, और देखिए उसी का रिजल्ट है कि इस बार फिर से लेटेस्ट रेडियो लिसनिंग फिगर्स में हम फिर से नंबर वन है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड मिलकर, यानी कि जो लाइका ग्रुप है, चाहे वो यहाँ हो लंदन में हो या बाहर कहीं हो, सब मिलकर हमारे रेडियो को बहुत ही प्यार से सुना जाता है। और आप देखिए गोल्ड तो सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन बना है हर बार की तरह इस बार भी, यानी कि नंबर वन। और ये सब आपका प्यार ही है, इसलिए हम एक बार फिर से नंबर वन बने हैं। और जिन्होंने इतना प्यार दिया है उन सभी को थैंक यू कहने का भी समय आ गया है, तो पहले ही थैंक यू कहती हूँ। लेकिन उसके अलावा जिन्होंने इतने खूबसूरत मैसेजेस भिजवाए हैं उनको भी थैंक यू कहने का समय आ गया है। अरुणा जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा ही बहुत प्यार के साथ सुनती हैं, ये गाना आपके लिए भी था। जयंतन मीना जी थैंक यू, हमेशा ही साथ देते हैं और आप बस यही लिखते हैं कि कोई भी गाना हमारे नाम कीजिए। तो चलिए अगला गाना बिल्कुल आप दोनों के लिए होगा मेरी ओर से। मीरा आप भी सुन रही हैं, आई थिंक आप पोर्ट्समाउथ में हैं, सुस्वागत है आपका। हमारे साथ है हमारे राजेश जी, बहुत खूबसूरत आपका मैसेज है, कहते हैं आपको खुशहाल और उज्जवल धूप वाला रविवार की शुभकामनाएं। क्या बात है, मैं आपको कोई तोहफा नहीं दे सकता सिवाय इसके कि मैं आपको और आपके द्वारा बजाए गए गानों को सुनता रहूं। सच कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप सुनते हैं हमारे लिए वही काफी है और वही तो हमें बनाता है नंबर वन, यानी कि एक अच्छी बात होती है, प्राउड मोमेंट होता है कि हम जो मेहनत करते हैं उसे आप सुनते हैं, और आप सुनते इसीलिए हैं क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है। सो थैंक यू, यूं ही साथ देते रहिए। कैंट में सलमा जी हैं, मिस्टर नरेंद्र पाठक हैं हमारे साथ, चैशम में एजाज सुन रहे हैं, कनाडा टोरंटो में उल्लास है, हमारे भारत गंगाराम हमारे साथ है, मिस्टर चियांग मिसेस चियांग हमें सुन रही हैं, हैरो में दिव्या है, सहर है मानु जी हैं, हैरो में महेंद्र बजारिया जी हैं, क्रॉइडन से महेंद्र पटेल शरफून सुन रही हैं, तोची है, जासू जी है, अजन है हमारे साथ। इसके अलावा कुछ और भी मैसेजेस हैं जिनके नाम मुझे नहीं पता है और उन्होंने नाम भी नहीं लिखे, तो अब क्या करूं? स्लाव में सुरजीत जी हैं, मिसेस शेख है, नरेंद्र बागिया जी आज आपने चार लाइन एक बार फिर से हमारे साथ शेयर किए, और कहते हैं ये गुलजार साहब की लिखी हुई है, और इसमें लिखा है कि पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है, किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, क्योंकि ये जिंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है। कौन किसी से चाह कर दूर होता है, हर कोई अपने हालातों से मजबूर होता है। ये सारी लाइनें आपने अपने सारे दोस्तों को डेडिकेट की हैं, चलिए हमारी ओर से भी आपके सभी और हमारे सभी दोस्तों को डेडिकेटेड। एंड ऑफ कोर्स मीनल त्रिवेदी आप भी हमें सुन रही हैं, तो भाई मैसेजेस का सिलसिला धड़ाधड़ बढ़ता जा रहा है। रोशनी वियाना से अनिल सोनी जी, रीडिंग से रुकैया जी, सभी का धन्यवाद है। और अब और मैसेजेस पढ़ूँ इससे पहले मैं आपको एक गाना और सुनवाती हूँ, मेरी ओर से ये गाना भी आप सबके लिए, और इस बार आवाज़ किसकी है?
1: Feel Good Track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो गाने में इस बार आवाज है हम सभी के फेवरेट एसपी बाला सुब्रमण्यम की,
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: पसंद किया गया था और पॉपुलर भी हुआ था।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
0: तो अमिता जी, थैंक यू आपके मैसेज के लिए, आप हमेशा ही हमारा साथ देती हैं। निर्मला जी कहती हैं कि भैया रेडियो नंबर वन है तो क्या हुआ, लिसनर भी तो नंबर वन है। अरे भाई, इसमें कोई शंक और शुबा ही नहीं है, आप सभी तो नंबर वन है, तभी तो हम नंबर वन बने हैं। सो थैंक यू निर्मला। हिना जी, थैंक यू, स्वागत है आप सभी का। और अब मैं आपको वो गीत सुनवाने वाली हूँ, एक ऐसा गाना जो जब बजता था तो लोगों की आंखें नम हो जाती थीं। और इस गाने ने इतनी पॉपुलैरिटी पाई कि जिसने इस गाने को गाया उसको उन्होंने बहुत हिट बना दिया, उनकी लाइफ बदल दी। और ऐसा एक भी शो नहीं रहा उनका कि जब इस गाने की फरमाइश ना आई हो। कई गाने हैं लेकिन एक गाना आप सभी ने सुना होगा जिसे बजाने वाली हूँ, और क्योंकि जिन्होंने वो गाया है उनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। अब पहेलियाँ नहीं बुझाती, बता देती हूँ, बात कर रही हूँ पंकज उधास की, और उनका गाया हुआ वो गाना कौन सा बताइए। समझ गए ना? यस, वही गाना सुनाने वाली हूँ क्योंकि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। आज ही के दिन मखमली आवाज वाले पंकज उधास जन्मे थे।
1: ये है लाइका गोल्ड।
0: तो उनके जन्मदिन पर उनका गाया हुआ वो सुरीला गीत बजेगा आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Riti Sharma on Like a Gold.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Danube, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02 0 3963 5757. Greens by Danube, prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
10: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
11: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
12: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
13: ट्रेवल इन स्टाइल का वादा है, कहीं भी घूम कर आइए। फ्लाइट्स और हॉलीडेज की बेस्ट प्राइसेस के लिए हमारे पास आइए। अपने अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए नंबर मिलाइए 02089540077। दैट्स 02089540077। आपके मन की तसल्ली के लिए ये फुल्ली बॉन्डेड है।
14: ट्रेवल इन स्टाइल,
15: ट्रेवल इन स्टाइल,
14: ट्रेवल इन स्टाइल।
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
17: विल नहीं है ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं। अभी कॉल करें 02089072444। अपनी फैमिली को सिक्योर करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 02089072444।
18: London, good news! Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
19: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
20: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 02071321458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
21: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. Ritu Sharma, live.

0: आनंद बख्शी की कलम से निकला हुआ ये गाना बहुत लोगों को तब भी रुला गया था और आज भी बहुत लोगों की आंखों को नम कर गया है। फरीदा जी, अमर जी, सहर जी, मिसेस चियांग और हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं क्या गाना है, हमारी आंखें भर आई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस धुन को सजाया था और आवाज थी मखमली पंकज उधास की। मखमली आवाज, उनकी आवाज को कहा जाता था। आज ही के दिन जन्मे थे लेकिन अब पंकज उधास इस दुनिया में नहीं है। 2024 में 72 की एज में इस दुनिया को छोड़कर चले गए लेकिन अपने काम के लिए उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे अवार्ड जीते। उनके भाई मनोहर उदास भी एक बहुत ही जाने माने सिंगर है। कुछ और बातें उनके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी क्योंकि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। तो आप हमारा साथ देते रहिए, प्रोग्राम के अगले हिस्से में सुनवाऊंगी जोड़ी नंबर वन और आज की जोड़ी कौन सी है, बताऊंगी। लेकिन फिलहाल
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: आपको बता दें कि आज 1 पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 128 भारतीय रुपए, 371 पाकिस्तानी रुपए एंड 163 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is £109.5 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
4: ये है
5: Leica Gold.
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: तो आपको बता दें कि आज रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच में मैच है और ये मैच शुरू होगा अब से बस थोड़ी ही देर में यानी कि 11 बजे से और मैच का हाल हम आपको बताएंगे ना, आप बस हमें सुनते रहिए।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA।
5: ये है
4: Leica Gold.
6: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
7: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
6: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
7: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
6: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: Bole, tu kya kar raha hai?
3: रहे थे।
4: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
3: ये तो बताओ, कोई पता चला?
12: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
3: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
13: शीघ्र शीघ्र।
12: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
14: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
15: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
16: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4 5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
17: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
18: Har crunchy bite mein ek khas ethnic swaad. Har fry em shape mein hai wo bachpan ki yaad.
19: Snack time hunger ko banaye aur bhi tasty with Jamin's Fry Em. In different shapes and yummiest flavors like lemon chili mint, manchurian, masala, peri peri or shizwan with best quality and same ethnic taste.
18: Jai Min Fryans, available at your nearest ethnic grocery stores.
20: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
21: Classics to make your weekends feel good. This is Ritu Sharma on Leica Gold.

छुपाना भी नहीं आता। आई जस्ट लव दिस सॉन्ग। क्या धुन बनाई है अनु मलिक ने और क्या गाया है पंकज उधास ने। पंकज उधास जिनकी की आज बर्थ एनिवर्सरी है। और पंकज उधास ने बॉलीवुड में तो सिंगिंग की ही है, लेकिन बेसिकली वो एक गजल सिंगर थे और उनको जानने वाले या उनके जो फैंस हैं उन्हें पता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की और गजल्स जो सिर्फ महफिलों में गाई जाती थी उन्हें अपनी आवाज़ के थ्रू आम जनता तक पहुंचाया। कई गज़ल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और लेकिन मैंने आपको बताया ना कि वो नाम फिल्म का जो गाना था उसने इनकी ज़िंदगी बदल दी। और एक इंटरव्यू में पढ़ रही थी पंकज उधास का, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी मेरा शो नहीं गया जिसमें लोगों ने मुझे चिट्ठी आई है गीत की फरमाइश ना की हो। जब भी मैंने परफॉर्म किया पीछे से आवाज़ें आती थी कि पंकज जी वो गीत सुनवाइए। और इसीलिए आज जब उनकी बर्थ एनिवर्सरी है तो उनका गाया वो सबसे पॉपुलर गाना तो बनता था। आज हमने आपको गीत सुनाया और आप सबकी आंखों में आंसू भी आ गए, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन कुछ गाने होते ही ऐसे हैं जो हमें अंदर तक महसूस कराते हैं। और ऐसे ही और भी बहुत सुंदर गाने हैं, मुझे उनकी कई गज़लें भी बहुत पसंद हैं, लेकिन आज मैंने उनका एक और गीत सुनाया जो मेरा और आप सभी का फेवरेट था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया, उन्हें संगीत नाटक अच्छी अकेडमी अवार्ड भी मिले और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए। न सिर्फ वो एक सिंगर थे बल्कि एक बहुत ही नेक दिल इंसान भी थे और उन्होंने थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों की मदद के लिए एक पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ थैलीसेमिक यूनिट के माध्यम से बहुत काम किया और वो अक्सर ही कैंसर और अन्य चैरिटी कार्यक्रम्स के लिए फंड जुटाने के लिए शो

0: अरे तो अब मैं गाने सुनाऊंगी तो आपको याद आएगा कि शायद देखी है। चलिए देखते हैं जो गाने मैंने चुने हैं उन फिल्मों को आपने देखा है या नहीं। शुरू करते हैं जोड़ी नंबर वन का सिलसिला आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लेकिन उससे पहले याद दिला दें कि भाई अगर आज आप भारत पैसा भिजवाने की सोच रहे हैं तो आपको एक पाउंड के बदले में 127.5 भारतीय रुपए मिल जाएंगे। और इसके साथ ही अगर आप SBI योनो ऐप के थ्रू, बैंक के थ्रू या उनके ऐप के थ्रू पैसा भिजवाते हैं 1000 से ज़्यादा, तो आपको 75 पाउंड्स का वाउचर मिल जाएगा जब भी आप कराएंगे। और अगर आप 2000 पाउंड से ज़्यादा मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको मिलेगा 1 ग्राम गोल्ड कॉइन। और टर्म्स एंड कंडीशंस तो अप्लाई रहेंगी ही।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਈ 769 ਤੇ ਵਰਜਿਨ ਮੀਡੀਆ 811 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ।
1: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
2: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
1: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
1: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
2: ईमेल नाउ info@royalchayvending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: Like a Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर, DAB Digital Radio पर, Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे। Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ये थी हमारी आज की जोड़ी नंबर वन का पहला गाना लता जी और मन्ना दा की आवाजों में। फिल्म का नाम उजाला। 1959 में आई थी ये फिल्म। और आपको बता दें कि आज की जोड़ी नंबर वन में साथ में बहुत सारी फिल्में नहीं की हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है ये दोनों दो फिल्मों में साथ में नजर आए हैं। एक तो थी उजाला जिसका का गीत मैंने आपको सुनवाया, और दूसरी फिल्म का गाना मैं अब आपको सुनवाने ही वाली हूँ। और उस फिल्म का गीत हमारे मित्र पटेल जी एक खास गीत सुनना चाह रहे थे, और आज मैं भी सोचकर आई थी कि वही गाना बजाऊंगी, लेकिन कल ही किसी ने वो गाना प्ले किया है तो मैं उसको रिपीट नहीं कर सकती, इसलिए मैंने दूसरा गीत चुना है। लेकिन मित्र जी आपकी पसंद का गाना मैंने नोट कर लिया है, ज़रूर आने वाले शोज़ में जल्दी ही बजाऊंगी। लेकिन आपको बता दूँ कि ये माला सिन्हा इस फिल्म में और इस गाने में बहुत सुंदर लगी हैं, और कई फिल्मों में बहुत खूबसूरत लगी हैं, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस रही हैं। हाइट ज़रा कम थी लेकिन एक्टिंग कमाल की थी। आपको पता ही है कि माला सिन्हा नेपाल से आती हैं, एक नेपाली क्रिश्चियन फैमिली से आती हैं, और पहले इन्हें आल्डा नाम दिया गया था इसीलिए, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम माला सिन्हा रखा, और क्या खूब काम किया। और मुझे बहुत पसंद है, अनपढ़ फिल्म हो या इनकी और भी कितनी फिल्में हैं, किसी दिन इन्हें भी यादें में लेकर आऊंगी। लेकिन फिलहाल तो समय हो गया है आज की जोड़ी नंबर वन का दूसरा गीत सुनवाने का। और हमारी अमिता जी जासू जी का कहना है कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे नाम कीजिए। बिल्कुल, आपके नाम किया, और अगला गीत भी आप सभी के नाम पर मेरी ओर से।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो भाई आगे बढ़ने से पहले और अगला गीत बजाने से पहले एक गुरुदेव गांजा आपको भी थैंक यू कह दें। आप गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, यस अभी बिल्कुल गुड मॉर्निंग है और आप शो को एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आपको ये भी बता दें कि अगर आप किशोर कुमार के फैन हैं तो यहाँ तो हम आपको उनके गाने सुनाते हैं, लेकिन अगर आप स्टेज पर लाइव उनके गाने सुनना चाहते हैं तो आपके लिए प्रोग्राम है जिसका ऐड आप हमारे यहाँ से सुन ही रहे हैं। किशोर कुमार के फैंस को बुला रहे एक स्पेशल म्यूजिकल नाइट हो रही है जिसमें केतन, इंद्रानी, संजय और 515 बैंड परफॉर्म करने वाले हैं, और ये होने जा रहा है फ्राइडे 19 जून को एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवेल में, एसेक्स में। और इस प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स कौन है? जस हम, लाइका गोल्ड रेडियो।
1: दिस इज लाइका गोल्ड। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: और वो गाना जो obvious था बजेगा ही, क्योंकि इस गाने में हमारी जोड़ी नंबर वन जो है, हालांकि इस फिल्म में और भी बहुत अच्छे गाने हैं, लेकिन उसमें दोनों शायद नहीं है, इसलिए ये गाना सुनिए।

0: दोस्त, हमारे आज की जोड़ी नंबर वन का दूसरा गाना जिसे हम डेडिकेट करना चाहते हैं अमिता जी और हैरो से दिव्या जी के नाम पर। आज की जोड़ी थी माला सिन्हा और शम्मी कपूर की जोड़ी। और संध्या, शेनफील्ड में आप सुन रही हैं। आपने सही कहा है कि माला सिन्हा के फादर नेपाल से थे और फिर वो बाद में वेस्ट बंगाल में सेटल हो गए थे, जहाँ पर माला सिन्हा का जन्म हुआ था। सो बस बहुत ही खूबसूरत हीरोइन रही है हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की। और शम्मी कपूर की तो क्या बात है, कमाल के एक्टर हैं, हमारे बहुत सारे साथियों के फेवरेट हैं। और इसीलिए सोचा क्यों ना आज इस जोड़ी को, जो ऑलरेडी नंबर वन है, नंबर वन बनाया जाए।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma. Leica Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026. This is Ritu Sharma.

लीजिए दो गाने हमने आपको सुनवाए बैक टू बैक एंड थैंक यू अमिता जी, एजाज जी, दिनेश पोपट जी, संध्या मावसर एंड शरफून, आप सभी हमारे साथ दे रहे हैं, गीतों को पसंद कर रहे हैं। और जो साथी घर में, बाहर, काम पे, गाड़ी में, शॉप में, गार्डन में, काम पर, जहाँ कहीं भी हमारा साथ दे रहे हैं, सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस शो में। आपको बताते चलूं कि मुझे कहते हैं ऋतु शर्मा और ये है आपका मनपसंद लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स। और आज है 17th May, संडे का दिन, और इस आवर में कुछ ब्लैक एंड वाइट क्लासिक्स सुनवाती हूँ और हम अपना थ्री वर्ड्स गेम भी खेलते हैं जिसके बारे में बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले बात करूँगी अधिक मास की। आज हमें राजीव पटेल जी और अर्जुन जी ने याद दिलाया है कि आज से अधिक मास की शुरुआत हो रही है। डेट्स एक दो आगे पीछे हो सकती हैं लेकिन आज से अधिक मास शुरू हो रहा है और ये एक एक्स्ट्रा मंथ, अधिक मास यानी कि एक एक्स्ट्रा मंथ होता है। और ये क्या होता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो शॉर्ट में बताती हूँ कि जो नॉर्मल कैलेंडर होता है ना वो सूरज सन पर आधारित होता है। जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो उसमें 365 डेज होते हैं और उसके हिसाब से हमारा पूरा ईयर बनता है। लेकिन जो हिंदू कैलेंडर होता है वो चंद्रमा यानी मून के कारण बनता है, और मून का एक चक्कर जो होता है, जो लूनर ईयर होता है, वो 354 डेज का होता है। और इसके चलते 365 और 354 का जो अंतर होता है वो 11 दिन का अंतर होता है हर साल। और अगर इस अंतर को ठीक नहीं किया जाए तो जो त्यौहार है और जो मौसम है उनका तालमेल बिगड़ जाएगा, जैसे कि होली फिर सर्दियों में आने लगेगी और त्यौहार और बदल जाएंगे। तो इस 11 दिन के अंतर को पाटने के लिए हर 32 यानी 16 डेज और 8 घंटे के बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है जिसे अधिक मास कहा जाता है, और इसे पुरुषोत्तम महीना भी कहा जाता है क्योंकि हमारे जितने भी हफ्ते के दिन हैं या जो महीने

0: भारतीय रुपए, और आपको ये ट्रांसफर करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। और इसके अलावा अगर आप एक हफ्ते के अंदर 1,000 pounds से ज़्यादा ट्रांसफर करवाते हैं तो आप 75 pounds का वाउचर जीत सकते हैं, और अगर आप 2,000 pounds से ज़्यादा ट्रांसफर करवाते हैं तो आपको मिल सकता है 1 gram गोल्ड कॉइन, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: तो चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं आज के हमारे थ्रीवर्स गेम की। और थ्रीवर्स गेम क्या है, जो पहली बार सुन रही हूँ उन्हें बता दूं कि बॉलीवुड के किसी पॉपुलर गाने के शुरू की जो 3-4 lines होते हैं उनसे मैं 3 words पिक करती हूँ और उनकी हेल्प से आपको गाना पहचानना होता है। तो आज के हमारे जो 3 words हैं, पहला है भूल, दूसरा वर्ड है मोहब्बत और तीसरा वर्ड है हुस्न। कौन सा गाना हो सकता है? 1964 की फिल्म है, रफ़ी और लता जी की आवाज़ें हैं, नौशाद का म्यूज़िक है। सोचिए कौन सा है ये गाना। पहला वर्ड है भूल, दूसरा वर्ड है मोहब्बत और तीसरा वर्ड है हुस्न। सोचिए, और अगर आपको ये गीत पता है तो अपना आंसर भिजवा दीजिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर। लेकिन फिर से याद दिला दूँ कि ये फिल्म 1964 में आई थी, मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ें हैं, नौशाद का म्यूज़िक है, और कौन सा है ये गाना।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: लाइका गोल्ड
3: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Visit travelhubworld.com.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
7: बोले तू ये क्या कर रहा है रे?
8: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
7: ये तो बताओ, कोई पता चला?
8: गुरु गुरु,
9: इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
7: तो शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
9: शीघ्र शीघ्र क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
10: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
11: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
12: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
11: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
12: And you didn't pay those massive roaming charges?
11: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
13: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
14: Location, location, location.
15: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
14: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
15: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
14: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
15: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
14: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
15: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
14: High appreciation.
15: In Dubai.
16: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
17: Atif Aslam live in the UK.
18: Dil diya gala karange na.
16: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
17: Book your tickets now at AXS.
16: Presented by

0: आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में वक्त फिल्म से लिया था यह गाना, म्यूजिक बाय रवि। और आप जानते हैं कि इस बार के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं महेंद्र कपूर। और चलिए अब शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला और सुनवाते हैं आपको पहला गाना।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: मदारी फिल्म से लिया है ये गाना। हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का गीत मुकेश जी और लता जी की आवाज़ें, और ये गाना डेडिकेट करते हैं करसन पिंडोरिया जी आपको, अमिता जी स्वीटी कारा। आपने इस गीत को पसंद किया है और ये था आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Riti Sharma on Like a Gold.
0: तो चलिए अब बताते हैं कि थ्री वर्स गेम चल रहा है और बहुत सारे साथियों ने सही जवाब दिया है। इससे पहले कि ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गीत बजाऊं, आपको बता दूं कि श्रेया पंड्या किंग्सबरी से, मनीषा शाह जया जी लूटन से, शरफून सरस्वती पंडित, अनिल जी इल्फट से, निशा केश नथवानी जी हाजरा जी, भरत गंगाराम उल्लास शेखर जी, आशीष देसाई नीलकंठ वॉकिंगम से, दिव्या जी हैरो से, नरेन पटेल दामिनी बहन, उषा खोड़ा एजवियर से, दिनेश पोपट जी, रोशनी जी आशिमा मैनचेस्टर से, करसन पिंडोरिया जी, ईशा जी सहर तोची, इतेश कुमार एंड कुकी, आप सबने आज के थ्री वर्स गेम वाले गाने को बिल्कुल सही पहचाना है। करसन पिंडोरिया जी आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। तो थ्री वर्स गेम वाला गाना भी सुनवाऊंगी थोड़ी ही देर में, लेकिन उससे पहले एक और ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का गीत, और इस बार आवाज गीता दत्त की।
3: दिस सुपरहिट सॉन्ग इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय टिल्डा बासमती राइस। डिस्कवर द सीरियस डिलिशियस पॉसिबिलिटीज विद टिल्डा।

0: गुरुदत्त की फिल्म साहब बीबी और गुलाम से लिया था ये गाना, जिसमें म्यूजिक था हेमंत कुमार का, और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना। स्वीटी कालरा, नीलम जी, रोशनी, संध्या भाव सर, थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। सहर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक डेडिकेशन भी आई है, ये मैसेज भेजा है प्राण कंवल जी आपने, और आपने बताया है कि आज आपकी ग्रैंड डॉटर जिनका नाम है जयकारा, क्या सुंदर नाम है जयकारा, आज अपना सेकंड बर्थडे मना रही है, और आपने उनकी फोटो भी भेजी है, क्या क्यूट है यार, बहुत प्यारी है, और सारा परिवार उन्हें जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयां दे रहा है। मेरी ओर से भी बहुत सारा प्यार एंड हैप्पी बर्थडे जयकारा, मजे के साथ पूरे परिवार के साथ आप सब उनकी बर्थडे मनाइए। और गाना अगला अब क्या करूँ, यहाँ तो क्लासिक्स ही बजते हैं, आपके नाम करती हूँ, आपके दादू के नाम कर देती हूँ, और बस आज आप में से किसी की भी बर्थडे है तो आपके भी नाम पर जाता है अगला गाना, जो है हमारे थ्री वर्स गेम वाला गाना, जिसे आज किसी ने भी गलत नहीं पहचाना, जहाँ तक मुझे लगता है सब ने सही सही पहचान लिया। तो चलिए सुनते हैं अब से बस थोड़ी ही देर में।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
5: This Eid ul-Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
6: रामकृष्ण हरी UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4 5JJ, 100 Dhol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code Leica10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 or visit meraboiler.com. T's and C's apply.
10: Travel in style, specialize in holidays to Sri Lanka. We offer tailor-made packages to suit your needs. Match your style with Travel in Style. Call 0208-954-0077. That's 0208-954-0077. Fully bonded, Travel in Style.
11: Travel in Style.
10: Travel in Style.
11: Travel in Style. Travel in style.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
11: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: 1982 में आई फिल्म जिसने 100 करोड़ का क्लब पहली बार टच किया और वो कारनामा करके दिखाया था बप्पी लहरी साहब के म्यूजिक से सजी फिल्म डिस्को डांसर ने, जिसमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे मिथुन चक्रवर्ती साहब। हालांकि इस फिल्म से जुड़े हुए हर किसी को बहुत फायदा मिला। बाद में ये ट्रेंड होने लगा कि 100 करोड़ की फिल्म जब 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करती है, उस ब्लॉक में आती है, उस स्लॉट में आती है, तब उस फिल्म को सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन आप खुद सोचिए 1982 में मिथुन साहब ने ये कारनामा पहले ही करके दिखा दिया है, इसीलिए नहीं कहते हैं उनको डिस्को डांसर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के प्यारे प्यारे संदेशों का। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भाई कहाँ गए थे कल, बताना पड़ेगा। आप लोग भी परिवार का हिस्सा हैं और हर चीज़ का अपडेट आपको हम देते रहेंगे। कल बस यूं ही अपने दोस्तों के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिला और थोड़ा दूर लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। और ये गाना मैंने क्यों प्ले किया, क्योंकि पूरे रास्ते हमने डिस्को डांसर के ही गाने सुने और सच बताएं बड़ा मज़ा आया। 80s का वो दौर जब हम तो बड़े छोटे थे, लेकिन फिर भी अब वो गाने सुनते हैं तो लगता है कि यार क्या वो दौर हुआ होगा और उस दौर के लोग जब ये फिल्म आई होगी तो कितना एंजॉय किया होगा। एक एनर्जी भरने वाला संगीत बप्पी लहरी द्वारा इस फिल्म में दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आगे बढ़ते हैं, अगला गाना आपको रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनाएंगे, साथ में है लता जी भी। फिल्म का नाम है दो कलियां। कहीं मत जाइए, बांध कर रखिए अपनी अपनी कुर्सियों की पेटियां।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिलने जा रहे हैं 127.5। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Laika Gold. भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
3: फोन 0208।

0: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: लता जी और रफी साहब की आवाज़ में दो गलियां फिल्म को, वैसे इस फिल्म के सारे गाने अच्छे हैं और संगीत की तो क्या बात कहें। दो सुरबाज एक साथ, लता जी और रफी साहब। हालांकि अगला जो गाना आने वाला है इसमें लता जी और किशोर दा की जुगलबंदी है, लेकिन बड़ा ही प्यारा गाना है। हम आपको वैसे कोशिश ये कर रहे हैं पहले घंटे में ऐसे गाने सुनाएं जो आपकी धड़कनों को एकदम आपके काबू में रखें। बेकाबू होने वाला टाइम अगले घंटे आएगा जब दिमाग की बत्ती जलानी होगी, लेकिन इसके साथ साथ एक और खुशखबरी आपके साथ शेयर करते हुए, जो हमारी लेटेस्ट रेडियो लिस्टिंग फिगर आए हैं वो बहुत हमें और आपको खुश करते हैं। ये सब कुछ बिना आपके नहीं हो सकता था, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया है। लाइका ग्रुप ने इस बार फिर से नंबर वन की एशियन रेडियो नेटवर्क के हिसाब से ग्रेटर लंदन में अपनी पोजीशन को स्थापित किया है। लाइका रेडियो लाइका गोल्ड इस बार भी आपके सोने जैसे दिल का को जीतने में कामयाब रहा है और सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला एशियन रेडियो स्टेशन भी बन गया है। इसलिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को। लेटेस्ट जो रेजर डेटा है हमारा, वो हमें और आपको बधाई देने पर मजबूर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला गाना किशोर दा और लता जी की आवाज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारा साथ देने के लिए।
0: You're a winner with Leica. आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: राजा रानी फिल्म का गाना सुन रहे थे आप. आरडी बर्मन साहब का संगीत, सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट. राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर इस फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आए थे. थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे, हालांकि दो गाने हैं और दोनों ही बड़े ही फेवरेट हैं बहुत सारे लोग के, लेकिन मेरे भी हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ. अगला गाना सानू दा और अलका याग्निक की आवाज़ में, फिल्म का नाम थोड़ी देर में बताते हैं और उसके बाद हम बताएंगे आज का गोल्डन वर्ड. तैयार रहिए, दिमाग की बत्ती जलानी है.
2: Latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: ये है Like a Gold
4: ट्रेवल हब world.com. कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com.
5: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: विजिट travelhubworld.com.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
9: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
10: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
9: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
11: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
11: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
11: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
13: A reliable airline, excellent in-flight entertainment and delicious food. All this at a low, low price. Connect with Travel in Style. Great choice of airlines to exciting destinations. Match your style to your budget. Only at Travel in Style. 0208 954 0077.
14: साढ़े दसवें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पवित्र जन्म स्थान तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब दे लाइव दर्शन देखो सिर्फ जी पंजाबी स्काई 769 ते वर्जिन मीडिया 811 ते रोज सवेरे 3 बजे तो 8 बजे तक सिर्फ जी पंजाबी ते ही.
15: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ.
16: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल.
15: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
17: एविक्शन टेनेंट डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी का मसला। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के लिए फास्ट एक्शन लेते हैं और रेसिडेंशियल और कमर्शियल कन्वेंसिंग प्लस कमर्शियल लीजेस हैंडल करते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। दैट्स 0208-907-2444।
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
18: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers. इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit StarTours.co.uk.

0: जी जी भैया, यानी कि गोविंदा और करिश्मा कपूर स्टार एक और सुपर डुपर हिट फिल्म का गाना सुन रहे थे आप। फिल्म का नाम है खुद्दार। और जब कॉमेडी और डांस वाली फिल्में जब गोविंदा का एक ट्रेडमार्क हुआ करती थी, तब खुद्दार जैसी फिल्म में उन्होंने हाथ आजमाया था। और कमाल की ये फिल्म थी, कहानी स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी, और फिल्म का ये गाना सबसे ज़बरदस्त। अगला गाना मुकेश साहब और लता जी की आवाज़ में आने वाला है, आशिक बना देगा ये गाना आपको। ध्यान से, इत्मीनान से इस गाने को सुनिए और उसके बाद हम बताएंगे आपको, आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन बर्ड।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128 पाकिस्तानी रुपीस, 371.13 श्रीलंकन रुपीस, 435.39 बांग्लादेशी टका, 163.59 अफगान अफगानी, 85.16 एंड 1 US डॉलर 1.33.
1: Like Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £109.56 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Like a Gold, London's number one Asian retro music station.

0: कमाल का गाना आशिक फिल्म का 1962 में फिल्म आई थी। मुकेश साहब और लता जी की आवाज में गाना था। शंकर जयकिशन साहब का इस फिल्म के लिए खूबसूरत संगीत और शैलेंद्र साहब ऑब्वियसली उन्होंने इस गाने के लिखे बोल। हालांकि हसरत जयपुरी साहब ने भी इस फिल्म के दो गानों में अपनी लेखनी का जादू बिखेरा है। लो आई मिलन की रात और तुम आज मेरे संग हंस लो गाने में भी हसरत जयपुरी साहब ने कमाल दिखाया, लेकिन तमाम गाने इस फिल्म के बड़े ही खूबसूरत। और अब आप बताएं, और हम सुनाए वाली थीम का गोल्डन बर्ड आपको बताने का मौका आ गया है, और वो है आग। लेकिन सिर्फ आग से कैसे काम चलेगा? आग को जो बुझा सकती है वो होता है पानी। तो आग को बुझाने वाला पानी और आग, आग और पानी है आज का गोल्डन बर्ड। इससे रिलेटेड कोई भी गाना आप हम तक पहुँचा सकते हैं, और ख़ास तौर पर बहुत सारे हमारे श्रोताओं को ये भी कहना चाहूँगा कि कोशिश मैं पूरी यही करता हूँ कि आप सबके गाने शामिल हों, लेकिन 1 आवर में हम 8 से 9 गाने ही प्ले कर पाते हैं। तो कई बार ऐसा आपको लगता होगा कि आप इग्नोर किए जा रहे हैं, अवॉइड किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप अपनी फरमाइश के पिटारा खोलें, हम तक पहुँचाएँ, और किसी और की भी फरमाइश पर अगर वो गाना प्ले हो रहा है तो हमारे साथ इंजॉय करें। बस यही चाहिए आपसे और कुछ भी नहीं। सुनते रहें, आज का गोल्डन बर्ड है आग और पानी।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली। सेंड मनी फास्ट टू इंडिया विद रेमिटली'स ग्रेट रेट्स एंड लो फीस। रेमिटली प्राउड टू बी द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट।
0: धर्मशाला में खेला जा रहा है आईपीएल का 61 मैच, यानी कि 61वां मैच, और बड़ा हाई स्कोरिंग मैच है जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 222 रनों का लक्ष्य दिया, जहां पंजाब किंग्स लक्ष्य का पीछा करते हुए लड़खड़ाती हुई इस वक्त 10 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त 86 रन्स और 4 विकेट का नुकसान।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय रेमिटली, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द रेमिटली ऐप टुडे। रेमिटली यूके लिमिटेड इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA। दिस इज द लाइकर रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स।
2: लंदन, दिस 20th जून बॉलीवुड की पावर हाउस वॉइस भूमि त्रिवेदी आ रही है लाइव London.
3: Ram chahe Leela chahe Leela chahe.
2: Get ready for one unforgettable night of music, dance and full on energy.
3: Udi udi ja, udi udi.
2: Presented by One World Events and SR Events at Crystal Grand Slough, 6 p.m. to 11 p.m. Book now at srevents.com. Bhumi Trivedi live in London. Exclusive radio partner Leica Radio.
4: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
5: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
4: Call today on 01923 883 100
5: or go to skylordcruiseandholidays.com.
4: Book with confidence.
5: We're Atoll protected.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4-5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code LEICA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
9: अरे चंचल कुमारी, साइको ऑनर शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया, लॉन्ग टाइम, कैसी हो तू?
10: खातून कौन थी?
11: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस।
10: तो पुलिस में जाती, वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल।
12: एक पति दो दो कंफ्यूजन और फुल फैमिली एंटरटेनमेंट। 15th मई से प्रजापति पांडे मचाएंगे ऐसा बवाल कि आप भी पूछेंगे कौन पत्नी कौन वो, पति पत्नी और वो दो, इन सिनेमाज नेशनवाइड फ्रॉम द 15th of May.
13: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
14: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 £1,000 voucher.
15: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
14: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
15: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
14: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
15: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
17: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
18: On Rug with Golden Rug.

0: अमित कुमार साहब और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में निश्चय फिल्म का ये गाना हम तक आया था। अमित जी और सपना जी की फरमाइश के गिटारिस्ट निकलकर नई सुराही ताजा पानी, थोड़ा सा अलग सा गाना। और इससे पहले जो पहला गाना हमने आपको सुनाया ताल फिल्म का, आज की थीम आप बताएं हम सुनाए को मद्देनजर रखते हुए, जो कि है आग और पानी, कहीं आग लगे लग जाए। आशा ताई की आवाज में वो गाना हम तक पहुंचाया था मीना शाह जी और सुमित चौरसिया जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ दिमाग की बत्ती जलाने के लिए। अगला गाना आ रहा है जिसके लिए सबसे ज्यादा लोगों ने इस गाने की फरमाइश की है, लगता है सबका ही ये गाना मोस्ट फेवरेट है, खासतौर पर आज की थीम को ध्यान में रखते हुए। चलिए सुनाते हैं लता जी की आवाज में, साथ में कौन है सिंगर वो हम रखेंगे सरप्राइज। सुनते रहे लाइका गोल्ड पर सुपर डुपर संडे वाली महफिल।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लंबाई के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 127.5, माफ कीजिएगा लंबाई नहीं, SBI की तरफ से। और आप अपने पैसों को वाई ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London and

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Lata ji aur Mukesh sahab ki awaaz mein pani re pani tera rang kaisa. Shor film ka ye gaana Lakshmikant Pyare Lal sahab ne is film ka sangeet diya tha aur Manoj Kumar sahab ke direction mein bani thi. Star bhi wahi the, producer bhi wahi, director bhi, sab kuch wahi. भरत कुमार साहब की फिल्म साथ में नजर आई थी जया बहादुरी जी. फिर ये गाना हम तक पहुंचाया बहुत सारे लोगों ने, इसलिए जल्दी से नाम लेते हैं. उल्लास जी, हंसुमती, निखिल, नीलम, संतोष, हंसा वोरा जी, रोशनी, नीलम अगेन, दो दो नीलम, ओके, के भामरा, जगदीश जी और निर्मला जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए. एकदम पानी की बाढ़ की तरह ये गाना हम तक आया है. और अगला गाना वो है, अभी तो खैर गर्मियों का वक्त चल रहा है, समर्स हैं, लेकिन विंटर्स के टाइम पे बस ये क्रिया करने में बड़ी मुश्किल होती है. और वो क्या है क्रिया, थोड़ी देर में आपको पता चलेगी.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
3: Oh, thande thande pani se nahana chahiye. Oh, thande thande pani se.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए चाहे ना आए गाना चाहिए. मतलब कुल मिला के कहानी का सार ये, गाने का सार ये है कि आपको मस्त रहना चाहिए, बेफिक्र रहना चाहिए, मस्त मौला रहना चाहिए. और ये प्यारा सा गाना हम तक पहुंचाया है महेंद्र जी, शमिता माफ कीजिए, शर्मिला जी और सुमित जी ने. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए ठंडे ठंडे पानी से. और मिथुन पटेल जी ने कहा है कि उन्होंने आज ये गाना 9:30 AM को सुना था. मिथुन जी, कल ये गाना 5:30 AM को सुनिएगा, तब इस गाने का असली मतलब समझ में आएगा. एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, अगला गाना आपको सुनाते हैं. थोड़ा सा इंतजार, लेकिन गाना है बड़ा मजेदार.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
1: Like a Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Ragasan. Details at likeradio.com. Like
3: On Rag with Golden Rag.
4: ये है
5: Like a Gold.
6: Like a Extra podcast update.
1: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट आपके लिए हाजिर है. अनुज राडिया इस बार हैं होस्ट. टॉकिंग पॉइंट हैं लाइका रेडियो नेटवर्क, आर ऑफिशियल रेडियो पार्टनर्स ऑफ इंडिया वीक फ्रॉम May 26 to May 31st.
6: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव.
4: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
7: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
8: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
8: विजिट TravelHubWorld.com.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
9: London. Volume padhari do. A 20 June Bollywood ni powerful voice Bhumi Trivedi. Aavi rahi chhe London.
11: Ram chahe, Leela chahe, Leela chahe.
9: Dhammakedar musical night party ready thai jao.
11: Udi udi jao.
9: Presented by One World Events and SR Events at Crystal Grand Slough, 6 PM to 11 PM. Tickets book karo srevents.com par. Bhumi Trivedi live in London. Exclusive radio partner Laika Radio.
12: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
13: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
12: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
13: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
14: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
15: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
14: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
15: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
14: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
15: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
14: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
17: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All at all protected. Call 0207-132-0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
18: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
19: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
20: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद।
21: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्राई एम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट, मंचूरियन, मसाला, पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट।
20: जेमिन फ्राई एम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
22: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, we bring you a special on India Week, hosted by Anuj Radia.
23: Saw Calpol Children's Medicine, and there was a little Indian girl on the box. Now, for me, that's a big change in how we're identifying and seeing ourselves. When my parents were shopping in Boots at that time for me, they would never have seen a little Indian girl on a box.
22: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 20.

0: उदित नारायण साहब और अलका यानी जी की आवाज में मोहरा फिल्म का ये प्यारा सा गाना हम तक पहुंचाया है मिसेस पाकी चांग, कौशल, सौरभ और पंकज वर्मा जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128 पाकिस्तानी रुपीस 371.3, श्रीलंकन रुपीस 435, बांग्लादेशी टका 163.7 एंड 1 यूएस डॉलर 1.33.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £109.56 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: लता जी की खूबसूरत आवाज में दिल अपना और प्रीत पराई, बड़ा ही सूदिंग गाने इस फिल्म के। और ये गाना हम तक पहुंचाया था भाई, इसके तो मुझे भी लिरिक्स चेक करने पड़े भाई, आग शब्द कहाँ पर आया है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया करसन पिंडोरिया जी आपका इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए। अगला गाना किसकी फरमाइश के पिटारे से निकल कर आया है, आज की थीम को ध्यान में रखते हुए बताते हैं थोड़ी देर में।
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: बिल्कुल अभी अभी RCB ने जीत दर्ज की है और पंजाब किंग्स 23 रन से भाई, और दूसरा मैच 3 बजे शुरू होने वाला है राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। न्यू दिल्ली में होगा ये मुकाबला IPL का 62।
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. Yeah, like a

0: आशा ताई और मोहम्मद रफी साहब की आवाजों में पद्मिनी कोल्हापुरी जी और ऋषि साहब की आवाज कितनी खूबसूरत लग रही है। जमाने को दिखाना है फिल्म का ये गाना है, लेकिन हमें तो आपको आज ये बताना है फिर से गोल्डन रॉक के तीनों ऑप्शंस का। आदि प्लस कानून ये है कि हम आपको तीन ऑप्शंस देंगे, ए बी एंड सी, जो कि गानों के ऑप्शंस होंगे। जो भी ऑप्शन आपको पसंद आता है उसे आप वोट की तरह हमारे स्टूडियो के नंबर पर कास्ट करेंगे, और जिस ऑप्शन को लेकर सबसे ज्यादा वोट हमें रिसीव होंगे वो गाना हमेशा की तरह आज भी बनेगा आज का गोल्डन राग। तो पेशे खिदमत है आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस, जो कि बड़े ही प्यारे हैं भाई। थोड़ा सा सैड सॉन्ग के साथ शुरुआत। ऑप्शन ए, दिन ढल जाए रात न जाए, गाइड फिल्म का ये गाना है। ऑप्शन बी है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, फिल्म का नाम है सफर। और ऑप्शन सी है, मौसम है आशिकाना, फिल्म का नाम है पाकीजा। लता जी की आवाज़ में ये खूबसूरत गाना है। तीनों ऑप्शन हमने आपको बता दिए हैं, एक बार फिर से बता रहा हूँ। ऑप्शन ए है, फिर से ध्यान से सुनिए, दिन ढल जाए रात न जाए, गाइड फिल्म का ये गाना है। ऑप्शन बी है, जो तुमको हो पसंद, फ्रॉम द फिल्म सफर। एंड ऑप्शन सी, मौसम है आशिकाना, फ्रॉम द फिल्म पाकीजा। वोटिंग लाइन्स ओपन हो चुकी हैं, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें, जब तक हमें मौका लगाते रहें चौका।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 127.5। याद रखें, आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले आवर में आखिरी गाना जो हमने आपको सुनाया था फिल्म यहूदी का, वो गाना हम तक पहुंचाया था दिनेश पोपट जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका। अगला गाना एंजॉय करें हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक महेंद्र कपूर साहब की खूबसूरत आवाज में।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai
3: Like a Gold.
2: Like a Gold.
4: Discover the best of Portugal with a fantastic Lisbon and Porto Twin City Centre break with Skylord. Fly from the UK and spend 3 nights exploring vibrant Lisbon with its historic streets, trams and riverside views. Then travel by train to beautiful Porto for 3 more nights, discovering its famous wine cellars and charming old town. Skylord prices start from just £339 per person. For multi-center city break packages with a difference, see skylordcruiseandholidays.com.
5: Call 01923 883100. Atoll protected.
6: Search is changing.
7: Customers aren't just using Google anymore.
6: They're asking AI.
7: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
6: One business, one recommendation.
7: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
6: Will your business be the answer?
7: Or the one that got left behind?
6: The future of search has already started.
7: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
6: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
8: चलो जाइए एक नवा सफर पर
9: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों ने मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दार एस सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स।
10: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ,
9: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
10: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
9: 011-6266-2481 पर। वधु

0: exchange rates.
1: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
0: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
3: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
4: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स।
6: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
5: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स।
7: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
8: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
9: Like a Gold, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे।
10: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
11: अभी अलविदा मत कहो।

0: महेंद्र कपूर साहब यानी कि हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक की आवाज में निकाह फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनाया। एक बार फिर से आपको बता दें आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस कि आप कंफ्यूज ना हो और अपने दिल की आवाज सुने और हम तक अपना वोट, कीमती वोट पहुंचाएं और अपने गाने को विजयी बनाएं। ऑप्शन ए है दिन ढल जाए रात न जाए, गाइड फिल्म का गाना है। ऑप्शन बी जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, फिल्म का नाम है सफर। और ऑप्शन सी है मौसम है आशिकाना फ्रॉम द फिल्म पाकीज़ा। अभी तक वोटिंग लाइन्स ओपन है भाई, वोट कास्ट करते रहें।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: भाई हम तो जो आपको हो पसंद वही गाना चुनेंगे। सफर फिल्म का ये गाना जिसे आपने सबसे ज्यादा वोट देके बनाया है आज का गोल्डन राग। जल्दी से लेते हैं नाम, किसने किसने दिया है इस गाने को अपना कीमती वोट और बनाया है इस गाने को विजयी। निर्मला जी, हसुमती जी, मनीष जी, महेंद्र पटेल, उल्लास जी, हंसा बोरा जी, किशोर लाडवा, रानी जी फ्रॉम स्लाव से, अंजलि जी, अमर, सुदेश टेकर, सुमित चौरसिया, कंचन, पंकज वर्मा, पारुल पटेल एंड सालिम अख्तर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना वक्त निकाल के मैसेज टाइप करने के लिए। भाई मानना पड़ेगा, इसे कहते हैं क्रेज संगीत से जुड़ा हुआ। चलिए होगी अब आपसे अगले हफ्ते मुलाकात। वीक डेज पर व्यस्त रहें, मस्त रहें और लाइका रेडियो के साथ भी जुड़े रहें। नेक्स्ट आ रही हैं सरिता जी आपको प्यारे प्यारे नगमे सुनाने। टेक केयर, बाय बाय, खुश रहें भाई, और फिर होगी आपसे अगले हफ्ते मुलाकात।
1: ये है लाइका गोल्ड।

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक। माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स।
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड।
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल।
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02 03963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
7: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
8: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
9: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
8: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
9: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
8: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
9: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
8: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
10: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन
11: द वॉइस दैट is every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
12: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
11: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
12: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
13: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4 5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full-on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Leica listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
14: ट्रेवल इन स्टाइल का वादा है, कहीं भी घूम कर आइए। फ्लाइट्स और हॉलीडेज की बेस्ट प्राइसेस के लिए हमारे पास आइए। अपने अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए नंबर मिलाइए 02089540077। दैट्स 02089540077। आपके मन की तसल्ली के लिए ये फुल्ली बॉन्डेड है।
15: ट्रेवल इन स्टाइल,
16: ट्रेवल इन स्टाइल,
15: ट्रेवल इन स्टाइल।
17: Next, Sarita Sabharwal with Golden Memories. This is Leica Gold.
18: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: गुड आफ्टरनून। बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। पहला गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म बाल ब्रह्मचारी, 1996 की फिल्म थी, और दूसरा गीत लावारिस से 1981 की फिल्म। और दोनों गीतों को सुनकर क्या आपको कुछ याद आया? ये फिल्में किसने बनाई थी? अगर नहीं याद आया है तो सरिता ज़रूर बताएगी, लेकिन ज़रा पहले आपका हाल चाल तो पूछ लूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी हैं आप खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू एंजॉय। जी, और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थिरकते हुए गाने तो चुन चुन कर लाई है सरिता आप ही के लिए। भाई, आज के प्रोग्राम का पहला गीत सुनकर तो ज़रूर आपके पैर भी थिरके होंगे, आपने भी थोड़ा बहुत तो डांस कर ही लिया होगा। और एक अरसे के बाद मैंने इस गीत को प्रोग्राम में जगह दी। उम्मीद करती हूँ कि आपकी भी पुरानी यादें कुछ ताज़ा ज़रूर हुई होंगी, राइट? और आज के प्रोग्राम के फर्स्ट आवर में कोई वर्ड नहीं है कि एक ही वर्ड पे सारे गाने, क्योंकि जिनकी फिल्मों के मैं गीत आपको सुनवा रही हूँ, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी ज़बरदस्त फिल्में बनाई और उनके सभी गाने बड़े खूबसूरत, और उन्हीं में से मैंने इस आवर को के गीतों को सजा लिया है। यस, प्रकाश मेहरा साहब, जिनका जन्म हुआ था 13 जुलाई को 1939 में और 17 मई 2009 में ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए, यानी आज ही के दिन इन 2009। हिंदी फिल्मों के एक निर्माता और निर्देशक थे ये, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। प्रकाश मेहरा का जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था और 50 के दशक में इन्होंने अपनी फिल्मी जीवन की शुरुआत एक प्रोडक्शन कंट्रोलर की हैसियत से की थी। सो 1968 में उन्होंने शशि कपूर की फिल्म हसीना मान जाएगी का निर्देशन किया था, यानी डायरेक्ट की थी, और जिसमें शशि कपूर ने ड्यूअल रोल दोहरी भूमिका निभाई थी। इसके बाद फिर 1971 में मेला आई और ये सिलसिला चलता रहा। इनके बारे में थोड़ी और जानकारी भी मैं ज़रूर दूंगी, लेकिन पहले ज़रा ये जानकारी दे दें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you today 127 rupees and 45 paisa. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be into win.

0: जाने मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी।
1: भैया हसीना मान ही जाएगी, इतने प्यार से कोई बुलाएगा तो।
2: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: और इसी के साथ मैं अपने सभी सुनने वालों को थैंक्स कहना चाहूँगी जो बड़े प्यार से हमें अपना वक्त देते हैं, अपने कान उधार देते हैं और जहाँ भी कहीं मिलते हैं बड़े प्यार से रिसीव करते हैं, बहुत इज्जत भी देते हैं, प्यार देते हैं और एहसास दिलाते हैं कि हमारे पेशकश उन्हें पसंद आती है, हमारे गीत उन्हें पसंद आते हैं, ये जानकर अच्छा लगता है। और वैसे भी हमारी तो अब रेजार फिगर्स जो हैं वो बता रही हैं लेटेस्ट रेजार डेटा कि लाइक गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा सुनने जाने वाला रेडियो है इन लंदन, इन यूके, लंदन में कहूँगी, ग्रेटर लंदन में। सो लाइका ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड स्टिल द नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड रिमेन कंसिस्टेंट विद द लाइका गोल्ड नाउ बीइंग लिसन्ड टू longer than any other commercial Asian radio station in the UK according to latest Raja datas. So thank you so much and congratulations to you as well कि आपने हमें अपने अपना समय दिया इतना और इतना प्यार दिया और इसी तरह से अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहें।
2: ये है Like a Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
1: सो हसीना मान जाएगी फिल्म का गीत तो आपने सुन लिया। हसीना मान जाएगी में डबल रोल था शशि कपूर का, जैसा कि मैंने बताया पहले। प्रकाश मेहरा जी ने इस फिल्म को बनाया था और कौन थे इस फिल्म में शशि कपूर के साथ, बबीता, अमिता एंड यूनस परवेज, कल्याण जी, आनंद जी का संगीत। और ये गीत मेला से चुना है मैंने, रफ़ी साहब एंड लता जी की आवाज़ें।

0: जी हाँ, ये हमारे भी मिलने का वक्त है, इसलिए आप सभी चले आए हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस आपके मुझे बराबर मिल रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच। ये प्रकाश मेहरा जी की दूसरी फिल्म थी जिसमें संजय खान, फिरोज खान और मुमताज़ ने काम किया था, सचिन भी थे इस फिल्म में, और आर डी बर्मन साहब का संगीत था।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: और कुछ मैसेजेस, और मैसेजेस के उस पार जो गीत आप सुनने जा रहे हैं वो मैंने चुना है फ्रॉम द फिल्म हाथ की सफाई, और ये गाना काफ़ी पॉपुलर है। ये मसाला फिल्म थी एंड सलीम जावेद साहब ने स्टोरी लिखी थी एंड प्रकाश मेहरा साहब ने इसे डायरेक्ट किया था। विनोद खन्ना, रणधीर कपूर, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना सभी ने इसमें काम किया था एंड फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था विनोद खन्ना को, द ओनली नॉमिनेशन फॉर हिम। एंड सिमी ग्रेवाल ने भी काम किया था इस फिल्म में। फिल्म का संगीत बड़ा ज़बरदस्त था और इस फिल्म का संगीत दिया था कल्याण जी, आनंद जी ने। वेट फॉर द सॉन्ग आ रहा है, बहुत ही प्यारा संगीत।
2: सरिता सबरवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
3: Nuromol Dual Action contains the power of ibuprofen
4: and the strength of paracetamol
3: combined together to provide faster, longer-lasting, more effective relief than regular painkillers alone. Hit pain hard
4: with Nuromol Dual Action Pain Relief.
3: Contains ibuprofen and paracetamol for pain not relieved by regular painkillers. Ibuprofen or paracetamol individually.
4: Always read the label.
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: International Siddhashram Shakti Center ki prastuti Purushottam Mass mein aaiye aur divya aashirvad paaiye. 17 Mai se 15 June pratidin dopahar 12 baje se 2 baje tak Shri Mad Bhagwat Parayan aur Shaligram Puja Bhagwan Vishnu ke hazar namon ke sath. Sath hi har shanivar Shri Raj Rajeshwar Guruji ke sath Sundar Kand Paath aur Hanuman Chalisa Healing dopahar 3 baje बजे से 7 बजे तक, स्थान 22 मामास्टर रोड हेरो HA37RR। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 0208426 0678 और विजिट सिद्धाश्रम ऑफिशियल वेबसाइट।
13: ट्रेवल इन स्टाइल का वादा है, कहीं भी घूम कर आइए। फ्लाइट्स और हॉलीडेज की बेस्ट प्राइसेस के लिए हमारे पास आइए। अपने अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए नंबर मिलाइए 0208954007। दैट्स 0208954007। आपकी मन की तसल्ली के लिए ये फुल्ली बॉन्डेड है।
14: ट्रेवल इन स्टाइल, ट्रेवल इन स्टाइल, ट्रेवल इन स्टाइल।
15: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
16: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
15: मसालेदार मसाला टैंगी टोमेटो सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स।
16: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग।
17: प्रेम पास्ट अने फ्यूचर वच्चे अटकायलू एक दिल,
18: तमने शुं लागे छे हुं अहीं साचे वेडिंग प्लान करवा आवी छुं।
17: वांकी चुकी लव स्टोरी स्टारिंग पूजा जोशी, परीक्षित तमलिया, भाविन भानुशाली, मिलोनी जॉनसा, अ फिल्म बाय ध्वनि गौतम, रिलीजिंग ऑन 15th मई।
19: आ फैमिली वाली फीलिंग ने मैं त्यां बहुत मिस करी छे।
20: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 0208767-7627।
21: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
22: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
21: लाइका रेडियो, फाइनलिस्ट एट द रेडियो एकेडमी आरियाज 2026।

0: भैया आप भी वादा कर लें कि कहीं नहीं जाना है, 7 बजे तक मेरा ही साथ देना है। हेयर ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क के लाइका गोल्ड पर सुन रहे हैं। बहुत प्यारे गीत लिखे थे इस फिल्म के गुलशन भावरा ने। और अब
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: A pound in your pocket can get you Indian rupees 127.93, Pakistani rupees 371.3, Sri Lankan rupees 436.93, Bangladeshi taka 163.61, Afghan afghanis 84.1 and US dollars 1.33.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics. LAIKA Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: It's £109.56 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley. Leica Radio 90s, Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa, India. Cricket score updates, brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly. Proud to be the official partner of England cricket.
0: Right, भाई आज 62nd मैच हो रहा है दिल्ली में और ये मैच है बिटवीन राजस्थान रॉयल्स एंड दिल्ली कैपिटल्स। राजस्थान रॉयल्स ने बना लिए हैं 19.1 ओवर में 189 रन्स एंड उनके साथ खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स चूज टू फील्ड, सो अब जब वो बैटिंग करेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे कि क्या स्कोर हुआ है।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: Ye hai Leica Gold.

0: फिल्म पूर्णिमा से चुना था मैंने इस गीत को। नरेंद्र सूरी जी ने एक्चुअली डायरेक्ट किया था, लेकिन ये फिल्म इसको असिस्ट किया था, असिस्टेंट डायरेक्टर थे इस फिल्म के प्रकाश मेहरा जी, और उन्होंने एक गीत भी लिखा था इस फिल्म में, लेकिन ये गीत जो मैंने आपको सुनवाया ये गीत लिखा था गुलजार साहब ने और कल्याण जी आनंद जी का था संगीत।
1: Are we there yet?
2: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
1: Relax, I've booked the Uber already.
2: But how? My roaming isn't even working yet.
1: I switched to Simsy before we left London.
2: Simsy? Since when are you the tech expert?
1: Since I decided I want a stress-free holiday.
3: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
1: T's and C's apply.
4: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
4: ये तो बताओ, कोई पता चला?
5: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
4: शार्दू, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
6: शीघ्र शीघ्र।
5: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
7: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।

0: प्रकाश मेहरा जी को उनकी डेथ एनिवर्सरी पर हम एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और मुझे उम्मीद है अब तक के प्रोग्राम में जितने भी गीत शामिल हुए आप सबने खूब इंजॉय किए होंगे। और ये फिल्म कौन सी थी आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है, पर कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ कि दो गीत जो आपने बैक टू बैक सुने, पहला गीत था फ्रॉम द फिल्म दलाल, ये भी 1993 में बनाई थी प्रकाश मेहरा जी ने, एंड उससे पहले जो आपने गीत सुना वो मोहब्बत के दुश्मन फिल्म से था, और ये फिल्म भी बनाई थी प्रकाश मेहरा जी ने, और उम्मीद करती हूँ दोनों गीत आपने इन्जॉय किए। प्रकाश मेहरा जी ने 1973 में जब जंजीर बनाई थी उसका निर्माण और निर्देशन किया था, मतलब प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय हिम, तो ये फिल्म ज़बरदस्त हिट रही थी, और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन के जो डामाडोल करियर था उसको पटरी पर ला दिया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ प्रकाश मेहरा का रिश्ता गहरा हो गया, और दोनों ने लगातार 7 सुपर डुपर हिट फिल्में दी थी। फिल्म जादूगर इतना नहीं चल पाई थी, इसलिए उनका रिश्ता भी थोड़ा डगमगा गया। प्रकाश मेहरा जी ने बाद में जिंदगी एक जुआ फिल्म बनाई अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित जैसे स्टार्स को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिल्म कमाल नहीं दिखा पाई। 1996 में उन्होंने राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार को लेकर फिल्म बनाई थी बाल ब्रह्मचारी, जिस फिल्म के गीत के साथ मैंने आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया था, बहुत नज़रें लड़ गई हैं, गाना बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन लेकिन ये भी फिल्म ज़्यादा नहीं चल पाई थी, असफल रही। ये उनके निर्देशन की आखिरी फिल्म थी। बाद में उन्होंने दलाल फिल्म का निर्माण किया, ये प्रोड्यूस की थी फिल्म दलाल, एंड जो एक सफल फिल्म साबित हुई, और इंडिया मोशन पिक्चर्स डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने 2006 में उन्हें लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया था। 2008 में इसी संस्था ने उन्हें प्रोड्यूसर से के रूप में भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स से सम्मानित किया। प्रकाश मेहरा जी की कुछ ही एक और फिल्में लाइव, मुकद्दर का सिकंदर का गीत मैं नहीं शामिल कर पाई हूँ अभी तक, तो आई थिंक यस इट्स कमिंग नेक्स्ट, तो आप तैयार रहिएगा, कुछ ही देर में वो गीत आप सब तक पहुँच रहे हैं। आपकी व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए क्या कहूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े प्यार से आप मैसेजेस लिख रहे हैं, मैं सबको व्हाट्सएप ही कर रही हूँ वापस, क्योंकि बहुत सारे नाम लेना मुश्किल हो जाता है, तो जिसका नाम मिस हो जाता है तो वो नाराज़ हो जाते हैं, इसलिए मुझे मालूम है कौन से कान कहाँ बैठे सुन रहे हैं। थैंक यू एवर सो मच।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you today 127 rupees and 45 paisas. And it depends ki kitna amount aap transfer kara rahe hain. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every week when you send over £1,000. Also a 1 gram gold coin when sending over £2,000. Terms and conditions apply. So der mat kijiyega.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At Tesco, we know that right now every little helps. That's why we've made Aldi Price Match available in over 2,000 Tesco Express stores. Price matching on essentials so you can

0: the track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Mukaddar ka Sikandar ka title track aapne Kishore Da ki aawaz mein suna. फिल्म में बहुत प्यारे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे एंड फिल्म बड़ी कामयाब भी हुई थी. प्रकाश मेहरा साहब ने इसे प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट किया था. फिल्म में कादर खान साहब की स्टोरी थी एंड किसने काम किया था आपको मालूम ही होगा. वैसे तो विनोद खन्ना थी, राखी थी एंड उनके साथ साथ रेखा थी, रंजीत थे एंड ऑफ कोर्स मुकद्दर का सिकंदर में ए भी थे. बहुत खूबसूरत फिल्म, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा. और प्रकाश मेहरा साहब की ये फिल्म काफ़ी कामयाब हुई थी और सारे गीत जो थे वो कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किए थे एंड एक गीत प्रकाश मेहरा साहब ने लिखा था, बाकी अनजान साहब ने सारे गीत लिखे थे. एंड अब वक्त इतनी इजाज़त नहीं देगा कि इनकी सारी फिल्मों के सारे गाने सुनवाऊं, पर फिर भी जो मैंने चुने हैं गीत तो उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किए. एक कुंवारा एक कवारी एक कवारा भी इन्होंने ही बनाई थी. खलीफा, हेरा फेरी, खून पसीना का गीत आई एम प्लेइंग इट इन अ मिनट एंड आखिरी डाकू एंड ज्वालामुखी, देशद्रोही, लवारिस के गाने अच्छे थे. नमक हलाल का गीत एंड शराबी का गीत समझ नहीं आ रही कौन सा गीत मैं आपकी सेवा में पेश करूं और किसे छोड़ दूं. पर चलिए छोड़ते नहीं हैं, कुछ ना कुछ तो सुनवाती ही रहेगी सरिता. पहले ज़रा ये बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा का न्यू एपिसोड क्या कहता है. दिस इज़ अबाउट इंडिया वीक शोकेस एंड होस्टेड बाय अनुज राडिया. टॉकिंग पॉइंट्स हैं इसके, लाइका रेडियो नेटवर्क आर ऑफिशियल रेडियो पार्टनर ऑफ इंडिया वीक फ्रॉम 26th of May टिल 31st. एंड जो पुराने एपिसोड्स हैं वो भी अगर आप देखना चाहते हैं, लाइक होम स्कूलिंग के बारे में डिबेट एंड विल्स एंड प्रोबेट, वेडिंग्स एंड बियॉन्ड, तो आप देख सकते हैं लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट पर. अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
3: ये है
0: लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: फिल्म गवाही से चुना था मैंने इस गीत को, और पहला गीत था फिल्म मोहरा का। आज हमने याद किया पंकज उदास जी को भी उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। इन दोनों गीतों के ज़रिए बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत जिनकी वेलवेटी आवाज़ थी, और इनकी प्राइवेट गज़ल्स भी और इनके प्राइवेट गीत भी बहुत बहुत कामयाब हुए थे। आपको याद होगे कि आहट आई थी इनकी एक एल्बम, उसके बाद मुकर्रर, तरन्नुम, महफिल, देन आफरीन। आई रियली लाइक्ड आफरीन की सभी के सभी गज़लें। महेश भट्ट साहब ने नाम में चिट्ठी आई है इनसे गवाई थी, और आपको मालूम है उस चिट्ठी ने कितना कितना कितना लोगों के दिलों में राज किया था और बहुत पसंद किया गया था इस गीत को। एंड इसके बाद इन्होंने बहुत सारे फिल्मी गीत गाए हैं और हर गीत में इनकी आवाज़ को अप्रिसिएशन मिली। वैसे तो बहुत से गीत हैं, लेकिन एक गीत जो इनका बहुत पॉपुलर था, घुंघरू वाला, घुंघरू टूट गए। वैसे तो शराब पीने की चीज़ है, आहिस्ता आहिस्ता पिया करो, ये सारे गाने सारी गज़लें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन देखते हैं वक्त कहाँ तक इजाज़त देता है। आइए अब आगे बढ़ें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भई अगर आप इनके जरिए आज पैसे करवाना चाहते हैं ट्रांसफर, तो 1 British sterling pound can get you 127 rupees and 45 paisas. And send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a 75 pounds voucher every week when you send over 1000 pounds and also a 1 gram gold coin when sending over 2000 pounds. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: राइट, अब मैं आपको चॉइस दे रही हूँ दो गानों की, क्योंकि महेंद्र कपूर साहब के ये दोनों ही गीत बहुत खूबसूरत हैं और एक ही फिल्म से हैं। फिल्म का नाम धर्मपुत्र था और इस फिल्म का एक गाना है आज की रात नहीं शिकवे शिकायत के लिए, दैट इज़ ए। एंड दूसरा गीत है भूल सकता है भला कौन ये प्यारी आंखें। इनमें से कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है, ए तुम्हारी आंखें या फिर बी आज की रात? यह या मैंने कंफ्यूज कर दिया आपको कि भूल सकता है भला कौन, ये गीत है ए, और बी है आज की रात नहीं शिकवे शिकायत के लिए। जो भी आपको पसंद है जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करके बता दें।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At Tesco, we know that right now every little helps. That's why we've made Aldi Price Match available in over 2,000 Tesco Express stores. Price matching on essentials so you can bag the basics with confidence. When every penny counts, just look out for the Aldi Price Match logo next time you nip into your local Express. Tesco, every little helps. Prices checked and matched in Aldi stores and online twice weekly. Pro rata excludes promotions. Selected products excludes Northern Ireland and Woosh. See tesco.com/Aldi Price Match.
1: Sarita Summerwall with your weekend classics.
3: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ।
4: ये तो बताओ कोई पता चला?
3: गुरु गुरु,
5: इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
6: तो शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
4: शीघ्र शीघ्र।
5: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
7: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
8: लंडन वॉल्यूम पधारी दो, आ 20 जून बॉलीवुड ने पावरफुल वॉइस भूमि त्रिवेदी आवी रही छे लंडन।
9: राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे,
8: धमाकेदार म्यूजिकल नाइट पार्टे रेडी थई जाओ।
9: उड़ी उड़ी जा, उड़ी उड़ी।
8: प्रेजेंटेड बाय वन वर्ल्ड इवेंट्स एंड एसआर इवेंट्स एट क्रिस्टल ग्रैंड स्लाउ, 6 PM to 11 PM। टिकट्स बुक करो srevents.com पर। भूमि त्रिवेदी लाइव इन लंडन, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।

0: ऐसे बहुत से गीत और गज़लें हैं जो पंकज जी ने गाए और आज भी हम जब सुनते हैं तो उनकी याद ज़रूर आती है। बहुत खूबसूरत वेलवेटी आवाज़ उनकी, पंकज जी की। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, 1951 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। चाहे वो दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा अमर रहेगी।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
0: और भी अब जो गीत मैं सुनवाने जा रही हूँ उसका भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है? वो ये कि सज्जन जी ने इस फिल्म में काम किया था। आज उनकी भी डेथ एनिवर्सरी है, उन्हें याद कर रहे हैं हम। एंड सज्जन जी वाज बॉर्न इन जनवरी 15, 1921 इन जोधपुर एंड हिज फुल नेम वाज सज्जन लाल पुरोहित एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम जसवंत कॉलेज इन जोधपुर बट ही हैड desire to become a lawyer, not an actor. पर वो पोइट्री में भी उनका दिल था एंड उन्होंने बहुत से गीत भी लिखे, बहुत सी स्टोरीज भी लिखी। सज्जन शोड हिज टैलेंट व्हेन ही रोड डायलॉग्स फॉर मीना इन 1944 एंड लिरिक्स फॉर दूर चले इन 1946। और काबुलीवाला में भी इन्होंने काम किया था। इन्होंने बहुत से साइड हीरोज़ या करेक्टर रोल्स किए हैं, तो काबुलीवाला का मैंने एक गीत चुना है, उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर पसंद करेंगे।
4: like
5: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
6: Wo aankhein thi dilbar ki ya nargis

0: track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: प्यासे दिल, ये था फिल्म का नाम, 1974 की फिल्म थी। महेंद्र कपूर साहब का साथ कौन दे रही थी, क्या आपने आवाज़ पहचानी? अगर पहचानी तो मुस्कुरा दीजिए। यस सरिता, हमें पता है। नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, जगजीत कौर की आवाज़ थी। बहुत प्यारा सा गीत था और उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। अब आगे बढ़ें।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: राइट, अगर आप पैसे आप भी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो एक पाउंड के बदले आपको इंडियन रुपीस मिल सकते हैं 127.95, पाकिस्तानी रुपीस 371.32, श्रीलंकन रुपीस 436.95, बांग्लादेशी टका 163.60 एंड अफगानी से 84.21 और US डॉलर्स 1.33।
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold.
3: LIKA Gold.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: भी गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो इस वक्त गोल्ड का रेट है 109 pounds and 56 pence पर ग्राम।
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
4: ये है Leica Gold.
2: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
1: इस वक्त मैच चल रहा है दिल्ली में और ये है 62nd मैच ऑफ IPL राजस्थान रॉयल्स एंड दिल्ली कैपिटल्स के बीच। राजस्थान रॉयल्स ने बनाए थे 193 रन्स और उनके 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे एंड अभी दिल्ली कैपिटल्स खेल रहे हैं। 16.2 ओवर्स में उन्होंने बना लिए 153 रन्स और 4 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स नीड 41 रन्स इन 22 बॉल्स। व्हाट डू यू थिंक, बना लेंगे या नहीं? चलिए देखते रहिए आप, आंखें वहां लेकिन कान इस तरफ।
2: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
4: ये है
3: Leica Gold.
1: Another beautiful song sung by Mahinder Kapoor saab. ये इस हफ्ते के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक भी थे, लेकिन मुझे महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में गाए हुए कुछ ही गाने बहुत पसंद हैं। उन्हीं में से मैंने चुना है इस गीत को। उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। आपके मैसेजेस के लिए तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ।

0: पी छोड़कर कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अभी सैंडी आ रहे हैं और सैंडी का आपने साथ निभाना है। अभी अभी मुझे मैसेज मिला है और ये मैसेज मरियम ने लिखकर भेजा। लिखती हैं, हेलो एंड आई एम इन केनिया इन मुंबासा लिसनिंग टू योर स्वीट वॉइस एंड प्लीज़ कैन यू प्ले द सॉन्ग फ्रॉम सागर फॉर ए स्माइल। वी आर इन द कार नाउ एंड इफ़ यू कैन प्ले वी विल बी वेरी हैप्पी। आई एम रियली सॉरी आई वॉन्ट बी एबल टू प्ले योर सॉन्ग बट थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेज। और आपके साथ साथ मेरे ढेर सारे साथियों ने मैसेजेस भेजे हैं, कोई केनिया में सुन रहा है तो कोई टोरंटो में सुन रहा है, कोई वैंकूवर में सुन रहा है, कोई यहाँ लंदन में सुन रहा है, कोई बर्मिंगम में एंड मिडलैंड्स में सुन रहे हैं, जो अगर आप मैनचेस्टर में सुन रहे हैं, जहाँ भी बैठे आपने मुझे मैसेजेस भेजे और इन्जॉय किया प्रोग्राम को, उन सबका मैं थैंक्स करना चाहूँगी। और जो साइलेंटली प्रोग्राम सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, गीतों को इन्जॉय करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी अगली मुलाकात कल होने वाली है। जी हाँ, मैं आई विल बी सिटिंग इन फॉर बाली ब्रह्मभट बिटवीन 1 and 4, तो कल भी मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। पर पहले आएंगी काजल, फिर आएंगे रवि शर्मा जी और फिर आएगी सरिता। इसी तरह से वक्त बीतता रहता है। बाय बाय, टेक केयर।
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: At Skylord Cruise and Holidays, we are cruise specialists,
5: bringing you incredible value and unforgettable luxury cruises worldwide.
4: Call today on 01923 883 100
5: or go to skylordcruiseandholidays.com.
4: Book with confidence.
5: We're Atoll protected.
6: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
7: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
6: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
7: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
8: साला कुल का दीपक समझे थे, पुलियोली निकला।
9: 15th मई को प्रजापति पांडे लेकर आ रहे हैं फुल ऑन कंफ्यूजन और डबल धमाका। कौन पत्नी कौन वो, सवाल बहुत है, आंसर्स और भी एंटरटेनिंग। पति पत्नी और वो दो, परिवार के साथ देखिए 15th मई से सिनेमाज में।
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
13: Mom, I'm outside. Yes, literally just landed.
14: Wait, how are you calling?
13: saying already, I'm still searching for Wi-Fi.
14: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
13: And you didn't pay those massive roaming charges?
14: Not a penny extra, just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
15: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
16: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
15: Mantra Holidays.
17: What's your travel mantra?
15: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
18: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
19: No more worries for me or
20: Southall Travel, at all protected.
21: Salita Summerwall, with your weekend classics.

0: इसी डिड टेल यू, बहुत ही दर्द भरा गीत है मुकेश की आवाज में, फ्रॉम द फिल्म निर्दोष 1941. अ फ्यू मैसेजेस उसके बाद, रियल पिक मी अप सॉन्ग, अ वेरी लाइवली वन, टू इनक्रेडिबल लेजेंड्स टुगेदर, लता मंगेशकर और शमशाद बेगम. सी रामचंद्र का संगीत होगा, फिल्म का नाम पतंगा 1949, एंड देन अ फर्स्ट फॉर लाइक अ गोल्ड एंड विंटेज गोल्ड, नॉट बीन प्लेड बिफोर. आवाज होगी पंकज मलिक की, whom you know I'm getting very fond of even more now. Film ka naam Nartaki, 1940. Enjoy.
1: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. This is Like a Gold. Vintage Gold with Sandy Shah on Like a Gold, Greater London.

0: London's favourite Bollywood classics all night. This is Like a Gold.
1: चलो जाइए एक नवा सफर पर
2: सिरीन हॉलीडेज अपनी पूर्व अफ्रिकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नैरोबी मुंबासा जांजिबार अने दार एस सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स
3: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
2: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे वधु माहिती माटे
3: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
2: 0116266481 पर वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर
4: लंडन वॉल्यूम पधारी दो 20 जून बॉलीवुड ने पावरफुल वॉइस भूमि त्रिवेदी आवी रही छे लंडन
5: राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे
4: धमाकेदार म्यूजिकल नाइट पार्टे रेडी थई जाओ
5: उड़ी उड़ी जा
4: Presented by One World Events and SR Events at Crystal Grand Slough, 6 p.m. to 11 p.m. Tickets book karo srevents.com par. Bhumi Trivedi live in London. Exclusive radio partner Laika Radio.
6: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
7: No more worries for me.
8: Southall Travel, at all protected.
9: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
10: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
9: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
10: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
11: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
11: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
11: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
11: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
14: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
15: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत पुराने मगर सदा बहार गीत

0: Mica Radio Network across London, Manchester, and the Midlands.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
4: Lights on, shutters up, staff ready.
3: But today's customers don't start on the high street.
4: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
3: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
4: They walk into your competitors.
3: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HartyHanks.com before your competitors do.
4: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe. The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
5: Atif Aslam live in the UK.
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
5: Book your tickets now at AXS.
4: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 Our line.
7: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
8: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स your travel mantra.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की प्रस्तुति पुरुषोत्तम मास में आइए और दिव्य आशीर्वाद पाइए। 17 मई से 15 जून प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक श्री मठ भागवत पारायण और शालिग्राम पूजा भगवान विष्णु के हजार नामों के साथ। साथ ही हर शनिवार श्री राज राजेश्वर गुरु जी के साथ सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा हीलिंग दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक। स्थान 22 मामस्टर रोड हैरो HA37RR। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 0208426-0678 और विजिट सिद्धाश्रम ऑफिशियल वेबसाइट।
10: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। दैट्स 0208-907-2444।
11: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: Experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
3: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
2: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
3: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

0: Mica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
4: Atif Aslam live in the UK.
3: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
4: Book your tickets now at AXS.
3: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.